0: या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे, कि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो, तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमात आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
1: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
2: कारोबार हो या फरमाइश, मसाइल का हल हो या सेहत करार, हो या खबरें, रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
3: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4।
4: इट्स 8 o'clock। आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन, जन रंग अमन।

अच्छा साजन वाई चिपह की माँ बात के शान कॉस्मेटिक स्टोर वाला सरस्ता सुध इश्मा टोल प्रोडक्ट मिलावी की खजी हाय हेलो इकराम भाई संग तबियत दिखा दे बराबर इकराम भाई हाफिज जहीर भाई था।

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक।

0: हाय हाय एमएसडी ज़ादे शम कुर्बान दे सब कोई रोका लाये वो क्या ना इसे राज भाई तो शायद लाकी होना मौसी न में लागे एमएसडी कदरमान से इज्जतमान से गुलाब और जनाद गोल से दुमरा देमो फिकर विदेश रहे और खुश होला वो से लीची सलागी नो दे तर वस्तव मौसी नाजे लीची बाद भी अखबार प्रोग्राम वाला है मौसी बिल्कुल जी वलू है वे बजर से भी वो हाय दासीवा संदर आया नहीं व्यास बिल्कुल जी ये मुझे खवाती नहीं अक्सर ऐसे वो दूने व्यार के बेक हाय दासी लगे ना चलो पहले फिक्र आए देता मियां वाया मैं ना मियां सा सदा से वो बिल्कुल शिंडर संदे वो लाइफ मजा गुरु नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वैस्तड़े
0: की सेरा तकवा गले गले जमजमेरा तकवा
1: हाँ नन
0: प्रेग दा जी जी खुरके में सूखता
1: और इस नाम दबाना सा

वाह जी सलमुना राज भाई कैसे हैं आप? तारिक भाई घर क्यों गया है? वाह जी वाह वेले खूर्त बुनसी अच्छा ओके जी सही वही जी तारिक भाई घर क्यों गया है? खैर से गया है। ओके जी बिल्कुल खैर खैरियत से रहे लौट दा बस ऐसे कोर्ट खुश रहे ऐसी के नहीं कला कला कोर्ट खुद लल चीदी थाक चीदा जी जरूरी भी मैं आपकी सिस्टर ईमान खदक ईमान खुरे के यू जहान मंदे मैसेज के वाले ऐसे लौट दा खैर खैरियत से रहे लौट दा कोर्ट थाक चीदा जरूरी भी

ভাই সে রাজ ভাই মেরা তা লোক আচ্ছা জি ঠিক না ঠিক না मेरा ताल्लुक थपी अलगड़ी से है और राज भाई थपी अलगड़ी थी ली दले दो आओ जी जी रशा मिली दले दो डी रशा मिली दले दो।

0: जना बिल्कुल फेमर सरा बहुत बहुत काम काम पोते है ठीक है तेमरो सरा काम दा ई वे बजे बदेना है ठीक है जैसा तो खला और यो द्वाकाल गोर गुची सुन रहे केलुने में पके कतल से गाना छे बिल्कुल देर को चश्मे को जमीन वाले से देर खबर हुई नो गोर बलकाल छे सो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी चो कैसे खबर की किम जैना हां
1: पकवान डोमेन में
0: सोगा
1: अनस डोमेन
0: में नुमारो तो ब्याह से
1: अनस
0: अनस गुल्स दड़ा है वहां से डुमेल ना डे डे वेलकम हर कले स्टडी माशी दे तभी है
1: ऑन द रास्ते के सही बरोबर
0: है जबर को ठीक ठाक माशा अनस दारू तो वे है ना छे प्रोग्राम ने और वे रेडियो मन वाला है अच्छा है कले ने और वे यू कॉल बस अच्छा है दारू तो वे अनस गुल सभा की आई का नूर से मसरूफियात जिंदगी

0: से हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जीवन रंग अमन।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: द आवाज दे द अमन। द आवाज दे द पाकिस्तान। द आवाज दे द रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: वायु कंगन वाली शायरी प्रोग्राम में जरूर करी। मोदी बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज खाडिर जत मनन पे कोशिश कम छ कंगन वाला चिकम ने हगा लाजिम चिकम ने हगा प्रोग्राम की जरीट कमा खाडिर जत मनन हाजी फारूक खान वाई चे 0333 औ दे लव चिकम देनो डबल नंबर हम जान सर नोट कवली छे छे दग नंबर बांधा सु कॉल कवली छे
1: टोली दुनिया ना यार हो
0: जान सर दग नंबर नोट कवली छे कम जमंग द हाजी फारूक खान पे मेन करक के चिकम दे दुबई प्लाजा बेसमेंट करक की मौजूद भी कना जान सर दग नंबर नोट कवली छे बिल्कुल तो चोबदी निकाल कवली जमंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर दे जमंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर चिकम दे हगा जान सर नंबर हम नोट कवली छे 0300 0391 9134 0300 91 9134 माने बिल्कुल काल कवली शे पदगी मेन डिस्ट्रीब्यूटर जमंगा हाजी फारूक खान जमंगा मेन डिस्ट्रीब्यूटर दी परक की लांदे बेसमेंट दुबे प्लाजा के मौजूद है और हाजी सिर्फ तवाय में कना ची बिल्कुल स्टार वाइस राजी कना खोजे निशे मावरे देखा और दब इंशाल्लाह बात करो वहाँ उस फिलहाल तमंग तो जिकम दिन हगल टिक्स कवले शिखा मतलब मेदारी चीप लिखलू की रात।

0: हाय हाय, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने। जो सर मांगे तो हाजिर हो, जो जर मांगे तो बेजर हो।
1: जो सर मांगो तो
0: क्या इखलास है इसमें भाई।

सनाया। सलाम सर, कैसे हो आप? बहुत सारी मुद्दत के बाद आपकी आवाज सुनी। ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि मजार भाई प्रोग्राम कर रहा है, वरना उस टाइम मैंने 4:30 भी फिर नींद से उठी।

0: Assalamualaikum. Kita berdua tinggal program sekolah Rauni Pasir No Size untuk sekian waktu sembilan. Assalamualaikum. Dengan diri saudara kita Hera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Shazma aur sara ji kim nikana rani aur shazma aur sara kyon
1: bilkul
0: acha shazma aur sara ji kim nikana rani ta program khair kala se dimashi bhai
1: dera manana
0: sarang chala khur ke shay waqt teri zindagi shado
1: alhamdulillah ta shay
0: program aur re e
1: aur wo program us mari kaha
0: acha mare mu pahak la uthe nila wa da ho ji kim ne uzain da khabar ma ke kana bi kham khabiya bi umir se kim nikana bi ai kana chara mari ar bar bar kiya bani si hone
1: ना
0: माड़े पा हरीश और बरोबर आओ अच्छा माड़े वरसा जी किम के ना ओसी सिर्फ खावी तो से यानी जोंद ने खुलसा किम के ना वरसे माड़े फुरे आओ
1: बिल्कुल मुहासा वटा वटा तो कहा कड़ा मुझे जिंदे ने खुलसा
0: अच्छा ओचे जर की जे किम के ना आ किम यड़वी किम दोणावी आ खत्म सी
1: बिल्कुल
0: अच्छा तू से सवरता इमेज को दोणा वरता वे तू सवरते मिस
1: दोणा
0: वरता अच्छा सो सो केड़ा वरता वे या जड़ा किम सुख वरता वे
1: हटक
0: अच्छा हटक बनी सी दीड़ा बिल्कुल।

सलाम एंड वेलकम एमडी ओचे से बात मो कड़ाई दाई रोधरीमा ओचे एमडी रानी स्पेशल सलामी नजर के वालेकुम सलाम ए फातिमा जर सने देर जो तमन्ना फातिमा जर सने पर गांव के मैसेज के वाले देर जो तमन्ना ओचे तख्त नसरत ने नादियन रबिया ओचे माशाल्लाह वेलकम वेलकम ओचे अनिला अनिल का प्रोग्राम पूरी सलाम में वेरखा ओ फातमता ओ फातमता हाँ सलाम विचे वेरखवा ओ गुला लेता हाँ सलाम ओ सायरो डेर जुताना नाम बिल्कुल सलमीना देवरता पासल यो जहान मनना ओचे सलाम अलैकुम ना सलाम अलैकुम भाई हाउ आर यू ओचे अहमद फ्रॉम बनगोल प्लीज प्ले सर के देखे आज कॉल करा ओला दीदन्ना सर डेर जो था सर के देखे आज कॉल करा रावड़ा दीदन्ना बिल्कुल इंशाल्लाह किम निगना आदाव जरूरत था प्ले की महा बाकी था

अच्छा सलाम अलैकुम ओचे, कैसे हो भाई? ओचे प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आशा फ्राम बनो ओचे फरमेश में फिर रखा सर ढेर जूता मना यो जहान प्रोग्राम के लिए बिल्कुल फरमेश होते पीरा की यो जहान मनना शुक्रिया।

टाइम नो रहने नहीं फ्रामा अपन को डेडिकेट फॉर यू। हमें तो इसके दो पल नसीब नहीं हुए, आम के हमें तो इसके दो पल भी नसीब नहीं हुए और बदनाम ऐसे हुई जैसे इसके जाद हमने किया हो वहाँ जबरदस्त यो जहाँ शुक्रिया देखो डेढ़ जो था।

खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: अजी जनाब वो सूर विषय शार्ट कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक न बाद बीआरसी प्रोग्राम तरफ था चिर तमाशाई आरजे शाहिद खान सरोसई
1: खुश खबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब ममालिक, यूरोपी ममालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
2: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश खुश्की सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
1: हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल पिशावर बन्नू लक्की करक डी आई खान खैबर पख्तूनख्वा पिंडी इस्लामाबाद के अक्सर जन स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवि ददवाथुर निशान वाला हुज़ैफ़ा कंपनी शिफा तेल चिसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शिवी याद सर वेख्तान गुरजीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पपल सरबा ने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी वेस्तान पैदाशी। शिफा तेल वेस्तान गुरजवल बंदवी वेख्तान गण और उजद कवि दे सर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

0: जो नवरंग तलाड सो हाँ नवरंग के फ्रेश वे बिक्री तलाड सो दिन इलावा आजम शॉपिंग सेंटर नवरंग शेरे पंजाब बेकरी नवरंग लुकमान जनरल स्टोर मनियारी गली नवरंग जहांगीर मनियारी गली नवरंग हाय हाय और हाजी अहमद शाह मनियारी गली नवरंग शेर तमाचा
1: दिविल यार तब में खाम खबोजे
0: हर जनाब हसीना काल कड़े वो प्रोग्राम खेम वेटा बैलेंस मैटर खाम ना
1: सरगी में पटी हुई देश
0: पाइचे पाशे नश्ते जरा मना ना चिये मदी हाँ दितो हाँ डेरा मनाना छोटी में वैसी हो जहान मनाना और जी जना बिल्कुल तुसे उस रुता लायो काल का वाला है शेम 0330 0344 717 फिर तवजो देफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम बचरता देता मिलावे जी तुम जी चे बदरता मिलावे जी और दा बचरंग कार के भी ستاسو مخ سپینوی ستاسو پا مخ با دانی دا غنا جبونا ترچری دا مخ گنجا دا بچورار سختم کوی ستاسو مخ با بلکل صفا کوی زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کئی او دین علاوہ یو عدد خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واس یا رائس فیس واس ہم وسرا استعمال کئی चिता सुता मुकमल फायदा मिलाओ से कलर तरफ तू छोक दारा सरा देखुम जी ने कॉल करा फुकाले न दे अटेंड चलाए दिया भाई अटेंड कुछ दिन नहीं लवा शिफा कंपनी शिफा तेलम तासु इस्तेमाल वाला इसो तासु विष्टान दोपारा तासु विष्टान उस दवल दोपारा लो यवलो गणवलो मजबूत अवल दोपारा और दिसार खरश पखा खत्म कवल दोपारा बेहतरीन तेल दी जरूरी है ट्राई के अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल जी ठीक ठाक रेडियो वन काम सो खबर है की बिल्कुल ठीक ठाक जी इतवार में लेना निकाल कर आई रहे हाँ आयशा बस आयशा बस खुदा खुद पहला और लगा थे काल कड़ाई जाना फसल दे वोड़ा बुद्ध दे वोड़ा डेर फान दे वोका मजा है वोकड़ा दा करेंगे कल कल दरे वो सड़ाम चलो जी वही का जी
2: अच्छा
0: मुझे
2: करा कट कुछ तरह कट कुटड़ा দেখো না না দেখো দেড়শো বানিস আইব দাদা সে বল বানিস আইব দেড়শো করবো সাজিদর বন্ধে পড়ালি এনে দিবার তাকছে না বলা আনে ওন করে
3: বিলকুল
2: সেই তো রেডিও খবর আদর তাই কত ওর খুব দেখ

आज यानूर दादे स्पेशल वो तो डाल ली भी और शैम्पू बहुत देता मिलाओ शी तेल बहुत देता मिलाओ शी जड़ा माखरा पशु लाओ सस्रो बाकी खबरें दे दे ट्रे कबादा देर तक मुझे ये आरजे शाहिद खान सरोप से।

0: है खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नई बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: आपका अपना रेडियो 88.4 नेटवर्क।

और ये कि ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, अगर ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, उस शख्स को मेरी मोहब्बत के सिवा किसी मोहब्बत में सुकून ना मिले।

और ए जिंदगी या ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे, ए जिंदगी या ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे। और सुन, अगर वो ना मिले तो तुम भी लौट कर मत आना।

0: और कहते हैं, कहते कि तुम उस शख्स की थकन का अंदाजा लगा सकते, तुम उस शख्स की थकन का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसको सफर के आखिर में पता चले कि वो सारा रास्ता गलत था।
1: क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा।
0: और फिर कहते कि शेख को नशों पर लगाकर मोहतरमा अपने नए आशिक को नशों से मना करती है।